0: की सर पर रखे।
1: अपने दास को दे बढ़ाए,
0: अपने सेवक को नाम जपाई।
1: अपने सेवक की आपत रखे,
0: ताकि गदमित कोए न लाखे।
1: रख के सेवक को ना पहुँचे,
0: रख के सेवक ऊँचे ऊँचे।
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दे दिस प्रगटाया।
1: की रीमे कल रखे,
0: पसंद करे लश्कर कोट लाखे।

हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, सेवकन को सेवगुन सुख दियो, सत्रन को बल मोबाद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत,

जब आए इस प्रभु को भयो, जन्म धरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेपते सब हूँ कहत सुनाए, कब बाच दोहरा ठाड पयो मैं जोर कर, बचन कहाँ सिर न्याय। पंथ चलाए तब जगत मैं, जब तुम करो सहाय। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान कहो, नितुड़ त्याय है संत, अंत लहेंगे मुक्त फल, पामहेंगे भगवंत। दोहरा काल पुरख की देह मो, कोटक विष्ण महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा कते, राव सस क्रूर जलेश। दोहरा राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भागत नेत, सुर्गवास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत। चौपाई।

महाराज जी कहते जिहड़ियां चीजां नूं मिठियां कर कर खांदा ना, जिहड़े पदार्थ विशे विकार इहनूं मिठे लगदे आ, प्यारे लगदे आ, ओही इहनूं रोगी बणाउंदे आ, ओही इहनूं दुखदाई हुंदे आ, दुख दिंदे आ। कदे इस जन्म च, कदे पिछले जन्म च, कदे अगले जन्म च, भावी जन्म च, लेकिन दुख जरूर दिंदे आ। दुखदाई मोह माए, महाराज जी कहिंदे पदार्थां दी तां गल छड्डो, आ जिहड़ा माया दा मोह है, पदार्थां दा जगत दा मोह भी है ना जिहड़ा, ओह भी दुखदाई है। ओह भी एक ना एक दिन बंदे नूं दुख दिंदा है। महाराज जी कहिंदे फिर कोई ऐसी वस्तु भी है जिहड़ी मिठा रस दिंदी होवे, जिहदे स्वाद चों दुख ना पैदा हुंदा होवे, सुख ही सुख प्रगट होवे। हुण दुनिया दे जिन्ने रस ने, सब रसां दे विचों दुख प्रगट हुंदा है। क्रोध चों भी, काम चों भी, हंकार चों भी, मोह चों भी, हर एक पदार्थ चो दुख पैदा हुंदा है। पर महाराज जी कहिंदे

महाराज जी कहिंदे जिन्हां ने सच्चे वाहिगुरु दे नाम दे रस नू चखिया ना वो मुक्त हो गए। उन्हां दा आउणा जाना जमना मरना मिट गया भाई, हर जीव निर्मल। महाराज जी कहिंदे क्यों मिट गया, क्योंकि वाहिगुरु निर्मल है, उहदे च कोई मैल नहीं। निर्मला कहिंदे जिहदे मन चो वस जाए वह मैल तो रहत हो जांदा है,

0: भुल चुक अखर बाद घाट हो जाए, गुरु की संगत बख्शन योग है। वैसे कोशिश करी दी है भी बाणी तो और महाराज जी दे भय तो जमा भी इधर उधर ना जाया जाए। कई बार जे फिर भी किसी नूं लगे कोई सच्चा बचन, क्योंकि कई बार चुभ जांदा है, ते कृपा करके गुरु दा जान के खिमा बख्श देना, क्योंकि बचन गुरु दे है, व्याख्या गुरु दी है। बंदा दोषी ता हुंदा जे अपनी होमे विच रख के किसी नूं दुखी करन लई कोई गल कहे, ते जे गल गुरु दी हो रही है, गुरु दे भय च हो रही है, तां फिर गुरु दी जान के हिरदे च बसा लैण च भला हुंदा। इन्नियां क बेनतियां प्रवान हुईया भुलां दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्रसाद सिंह जी, आप जी नूं गुरबाणी शब्द विचार लड़ीवार कथा सरन करा रहे सन सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरजंट सिंह जी पटियाले वाले भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने शब्द कीर्तन जोड़न भाई भुपिंदर सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी वाले का कीर्तनी जथा, उन्होंने पासों प्यार का सरवण करो जी। सतसंग जी, आने वाले शनि शनिवार को राग मल्हार कीर्तन दरबार साज रहे हैं। आप जी ने हाजरियां भरनिया जी, अगले हफ्ते वीरवार शुक्रवार से शनि शनिवार के सालाना अखंड कीर्तन समागम सजन जा रहे हैं, जिस विच 25 जुलाई नूं गुरदा साहब गुरु नानक प्रकाश ट्रेसी विखे अमृत संचार हो रहे हैं। जिन्हां प्राणी ने गुरु वाले बना उत्थे आप नाम लिखा सकते हो जी, नाम की दात अमृतदात प्राप्त करके जन्म सुविधा करो। आने वाले वीरवार नूं संगरांद दा दिहाड़ा है। आप जी ने सवेरे शाम हाजरी भरनी, भाई साहब भाई शहीद भाई तारू सिंह जी बंदे महान शहीद, उन्हों का शहीदी दिहाड़ा भी वीरवार वाले दिन ही है। आप जी ने हाजरी भरनी है जी। अगले हफ्ते 23 जुलाई में धन गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े आ रहे हैं। फ्रीमाउंट दी संगतां हर साल की तरह इस बार भी मनाए जाएंगे, जो कि शुक्रवार को श्री अखंडपाठ साहब, 26 तरीक ऐतवार को श्री अखंड पाठ साहिब संपूर्णता ऐतवार दीवान इस संबंध सजन गए। आज नहीं भर के लाए प्राप्त करने जा हम कीर्तन राय जुड़ना।

आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोहे आही पियासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाए वासा।

समाए प्रभु जी बसे साधु की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरे से तन बनते प्रभु को सिमरे से पत बनते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से बेमहताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी प्रभु को सिमरे सदा विनाशी सिमरंदे लागे जने आप दयाला नानक जन की मंगेर भाला प्रभु को सिमरे से पर उपकारी प्रभु को सिमरे तन सद बलहारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तन सुख बेहावे प्रभु को सिमरे तन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तन आनंद घनेरे प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरा भाग प्रभु गय सिमरन कार्ज पूरे प्रभु गय सिमरन कबूना चूरे प्रभु गय सिमरन हर गुण बानी प्रभु गय सिमरन सह समानी प्रभु गय सिमरन नेचल आसन प्रभु गय सिमरन कमल बिगासन प्रभु गय सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जिन को प्रभ मया नानक तिंजन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नी चौंकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर

दर दुख भंजना कटकटनाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानके प्रभु साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीतना पाई।

राम खिर माहे उदारी अनग परा चरण करत नहीं तरा हर को राम कोट पापर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंद ना पर हर का नाम जपत नस्तराय अनग माया रंग तिखना बुझावे हर का नाम जपत आगावे जे मार्ग ए जात अकेला ते हर नाम संग होत सुहिला ऐसा नामन सदा त्याय नानक गुरमुख परम गत पाहिए छूटत नहीं गोड लग बाही नाम जपत है पार पराही अनक बिघन जाय संगारे हर का नाम तत्काल उदारे अनक जोन जन्मे मर

हर हर गुणगाम, सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत सर दर दुख लथा, नाम की महिमा संत दवसा, संत प्रताप दुर्त सब नसा, संत का संगबट भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कश अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए, सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टडोल पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपति, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वखियान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे

उदास्तपि सरथिवाय अग्रमाय अमदपराध कनक सभय भरपूम दान न्यवली कर्म कर भव आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तव भी हम मैल न जावे अर के नाम संसर्ग शनाहे नानक गुरुमुख नाम जपत गत पाहे।

अष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावे एक बस्तकान भी खोट गवावे एक बीना देहे दस भी हरले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन रागा ब्रह मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिजन अपना हुक्म।

वे बस पंचा सासंग अमृत रस पुंचा सासंग सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग ना कतुता वै सासंग अस्तित मन भावे साधक संग माया दे बिन सासंग नानक प्रभ सु प्रसन्न सासंग दुश्मन समेत साधु कह संग महाप्रीत सासंग किस्यो नहीं बैर साधक संग ना भींगा बैर साधक संग ना ही गो मंदा सासंग जाने परमानंदा

आवे सासंग बस अगोचर लय साधु कै संग आचारु सह साधक संग बसे तानुचय साधु कै संग महल पहुचय साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पा

अब सासंग धर्मराय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु का संग पाप पलायन सासंग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वदान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं गजगाल दर्शन भेट तो उतने हाल साधक संग कलुक धराय साधक संग नरक पर हराय साधक संग यहाँ वहां सुहेला सासंग बिछरत रमेला जो इच्छा है सोई फल पावे साधक संग नृथा जावे पार ब्रह्म साधर तपसाय नानक उदराय सा सुन रसाय साधक संग सुनो हर नाओ सा संग नर के गुण गाओ साधक संग न मंते बिसराय सा संग सर पर निस्तराय साधक संग लगे पर मीठा साधु कह संग घट घट डीठा सा संग भयाज्ञाकारी सा संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध बैठे संयोग साधु की महिमा वेदना जाने जेता सुने तेता बख्याने साधु गिमा तय गुण तय दूर साधु गिमा रही प्रभुर साधु की शोभा का नाही अंत साधु की शोभा सदा बेअंत साधु की शोभा उचते उची साधु की शोभा मूछते मुची

गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंदर राज विमान सो नर्क पाती हो विस्मान जो जाने मैं जो बन वन सो दिष्टा का जंत आप इसको कर्मंत कहावे जन्म मरे वो जोन प्रभावे धन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान कर कृपा कर गरीबी बसावे नानक यहां मुक्त आगे सुख पावे तरमंता कर कर भावे त्रिन समान काश संगना जावे बो लश्कर मानुख पर करियास पर पितर ताका हुए विनाश सबते आप जाने बलवंत खिनमे हो जाए पसमंत किसी न बदे आप अहंकारी धर्मराय करे खुवारी गुरु प्रसाद जाकर मिटे मान सो जन नानक दरगे प्रवान कूट कर्म करे हों तारे शर्म पावे सगले फिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नर्क स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवाय हर दरगे को कैसे गावे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते काश होए तब सुख नाही कोए जब जाने मैं किस करता

एक सोए अपने चल ताप करने हार कौता करे रंग आपार मन में आपन अपने माहे नानक इमंद कह ना जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद करे बख्यानी सच सच सच बकीना कोट मदे कने बरला चीना भला भला भला तेरा रूप सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवन बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सरोग संत सरण जो जन भरै सो जन उदरनहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपति संत का दुख ने आर जा कटै संत का दुख न जमते ने छुटै संत का दुख न सुख सब जाए संत का दुख नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा ते हीन संत के हाथे रखे न कोय संत के दुखन धान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तराय संत का दुखन दे मुख पवाय संतन के दुखन काग जो लवाय संतन के दुखन सर्व जोन पाए संत के दुखन तरगत जोन करमाए संतन का दुखन तृष्णा मै जलाय संत के दुखन सब कोश हलाय संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच निचाए संत दुखी का था उनको राहे नानक संत भावे होए भी गत पाहे संगा।

थी सब जान देवन को एका भगवान जिसके दिए रहे अगाए बोर्ण दर्शना लागे आए मारे राके कुआ मानु का शनाई हाथ जिसका हुक्म भू सुख जिसका नाम रा कंठ परोहे सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन लागे कोए उस्तद मन में कर निरंकार कर भर भेद सद व्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा

अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभुदान कर कृपा देवो हर नाम सा जना की मांगो तूर पार ब्रह्म रि सरदापुर सदा सदा प्रभु के गुण गामो सा प्रभु तुम्हें ते आवाऊ चरण

तैबिन मैल कहो क्या तोता जनर जनरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत कौ कीस जय जो सुरपी जो संग समावे त किसे भू का मंत्र बतावे करन करावन करने हार नानक करते का नाहे समार जब अपनी शोभा आपन संग मनाई तब गमन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कलापे परवीन तेद कतेब कहा कवचीन जब अपने आका पुरतारे तो सगनम सगन कहा विचार है जपनु जप नाम रेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी कद जानू आप जा छल अशेद अभे समाया मुहा किसे ब्याप दमाया आपस गुआ पे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश जय का एक एक भगवंता तय कौन अचंद के सलाह गए चंद।

राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जात सभावित श्रेष्ठ उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न ही किश होया अपन आपन सो सब जगत परोए जागो प्रभ जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत गवेता नानक सकल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सभता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई ना मारे सो मुआ मनो विसार है तिस तज अबर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान व्यंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहे हो ब्याप परत पाले जियन बापां जो जो रचे सो तिसे त्यात जिस भावित लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक एक जान्या जन लागा हर एक राय इसकी आस न मिर्थी जाए सेवा को सेवा बने आई हुकम भूज परम बदभाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर भय निरवैर अंदर पूजे गुर के पैर ए लोग सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साथ संग मिल करो आनंद गुण गाव पर परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा गर्व उदार अमृत भजन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह स्वभाव आठ पैर प्रभ एको नेरा मिटे अज्ञान मन से अंधेरा सुन देश हृदय बसावो मन छे नानक फल पावो हलत पल दो लियो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसे तिसाज परिख्या मन तन नाम जपो लेवलाए दुख दर्द मनते पाओ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दर्ग निबह खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवे जाहे तिस्ते दूर कहाँ को जाए उभरे राखन हार त्याए निर्भव जपे सगल पाव मिटे प्रभु कृपाते प्राणी छुटे जिस पर राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन हो बसुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिजन गो कोई ना पहुँचन हार सिर पर ठाडा गुर सूरा नानक तागे कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रमान अंतर जामी पुरख प्रधान जिसमन बसे सोत निहाल ताके निकट न आपद काल अमर भये अमरा बद पाया साह संग नान घर त्याया।

संत जना के तू मन मंग आप छोड़ बेनती करो सा संग अगन सागर तरो हर धन के भर लिहो भंडार नानक पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितबो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपार सिमर सिमर ना बारंगवार नानक जी का ए आधार उत्तम सलोक साध के भजन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत हो उदार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जागे मन लग हर रंग जय जय शब्द अनाहत वाजय सुन सुन अंध करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उधरे तन के साथे सरन जोग सुसरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुंदरसना कहते कर प्रसाद दया प्रभुधारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की सतगुरु संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए।

दूर कथ न कथी ना आवे तोट काथ काथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाख्या पाहु अपार आखे मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार महाओ के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक वे जानिए सब आपे सचियार

न सुझई जे तिस गुण कोई करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया धरत तबले आकाश।

दुख पाप का नाश सुनै सर बर्मा इंद सुनै मुख साला हनुमंद सुनै जोग जुगत तन भेद सुनै सात सिमरत वेद।

सर का स्नान सुनया पड़ पर पाभिमान सुनया लागे सह ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुना के गाह सुनया सेख पीर पात साह सुनया अंधे पावे राहो सुनया हाथ होवे अस गाहो नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास मन्ने की गात कही ना जाए जे को कह पिछे पछता।

मन सगल भवन की सुध, मन मोह चोटा न खाए, मन जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन मार्ग ठाक न पाए, मन पास्यों प्रगट जाए। मन माग न चले पंथ, मन धर्म से तीसन बंद। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।

वै सचार तबले उपर केता पहर करती होर पर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी अजात रंगा के नाव सभना लिखया बड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखया केता होए केता तान सुआलिह रूप केती दात जाने कौन कूत

साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार संख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर खंद घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करहे पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बान अखरा सिर संजोग बखान जिन एह लिखे ते सिर नाहे जे फरमाए तिब ते पाहे

एक बार जो तुद पावे साई परिकार तू सदा सलामत निंकार परिये हाथ पैर तन देहे पानी धोते उतर सोखे।

होते अनूप। ताकि हाँ गल्ला कथिया ना जाहे, जे को कह पिछे पछतावे। तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे करिए सुरां सुदंकी सुध।

जन्मं जाए। न चित्तर न मित्र परे है पवित्र पृथ्वी से अदृश्य अदृश्य कृष्य भगवती शांत व प्रसाद कहते क्या छिज देश है क्या भेज भेस है क्या गांज कर।

स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपग त्रिभा दे गंजे गा दे सुभंग सर्वभागे सो सर्वा अनुरागे त्रिपुत स्वरूप है अचेज है अछूत है के नरकं प्रनास है पृथ्वी और प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है परजुगत अनुप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है।

हमें सले अपेख है दिमी नर जमा है अमी कर इमा है करीमर कुमार है के जुरुअत जुमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग नाग है के मितो पांग है मद प्रशांत व प्रसाद

अपन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म वास है, जास के जास है, पजांग प्रयात शांत नमो।

एक रत्ती के मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग सेह कूद पावन के गौन कह जात निवारे भारी पजान के पुह पली बिदन आवत सीस न जात विचारे एते पए तो कहा पए पूपत अंत को नांग ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे पूत पवेख पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिनवंत कुवंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसेख है भेद पुराण के तेव कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जती जत तार सबे सो विचार हजार के देखे श्री भगवान भजे बिन पुहत एक रती बिन एक न लेख है शुद्ध सिपाह।

मानव इंद्र गिरिंदर नरातप ज्यों तर लोक राज करेंगे कोट इस नानक जाद के दान अनेक सो अम्बर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर।

शीघ्री श्रेष्ठ दुखाय अचंप वा जुगाद स्वरूप स्वयं अवरक्षा मेरी तुम करो सिखी उबार सिख संग्रो दुष्ट जित हे उठवती उत्पाता सकल मलेश करो रन कहता जे

स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किस है जिस दे

सो सिख सन्मुख होए, देखो गुर ते वे मुख होवे, बिन सतगुरु मुक्त न पावे, पावे मुक्त न होर थै कोई, पुछो विवेकिया जाए, अनेक जूनी पर में आवे, बिन सतगुरु मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए, लाग चरनी सतगुरु सब सुनाए, कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुरु मुक्त न पाए, आव सिख सतगुरु आव।

मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसन वाप करे सो होवे एक स्यों लिव लाए कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए सिमरत साहतर पुन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी तत्ते सार न जानी गुरु भजो तत्ते सार।

साजियो अपने रचना दोई कुदरत साजिए करा से निठ जाओ दाता करता आप तुम तो सदैव कर फसाओ तू जनो सबसे दिल ऐसे जिंद को आओ कर सन डठ जाओ कर सन डठ जाओ।

करें होनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करें श्रृंगार उचे कुकहें वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार धर्मी धर्म करें गवावे मंगे मोख द्वार जती सदा में जुगत न जाने छाड़।

वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लय त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब न जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौने दयावे ताय। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलना जी।

जाने सोई किव कर आखा किव सलाही क्यों वरणी किव जाना नानके आखण सब को आखे एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा काहो वह नानक जे को आपो जाने अगे ग्याना सो है पाताला पाताल लाखे आगासा आगास ओड़ कोड़ कपाल थके वेद कहन कवा

एक दूजी भाव लख हो है लख हो लख भी सो लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीस हो इतराहे पद पवड़िया झड़िए हुए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस ना

तेरा दुख सब विसारना, अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुवारना, सबना गला समरा स्वामी सो क्यों मनो वसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तिर, कर तां तिर सब किश है, जिस दे सो पावे सदा शिव सला तेरी, ना मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नाही घर तिर, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम ही उधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मनाए वसिया, जिन इच्छा सा पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया वडियाईया, कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंचा शब्द तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूता तुद वस कीते काल कंठ कुमारिया, तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे, कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे, साची लिवे बिन देहन मानी देहन मानी लिवे बाजो, क्या करे विचारिया तुद बाद समरथ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया सुनो हुर था नाही, शब्द लाग सुवारिया, कह नानक लिवे बाजो क्या करे विचारिया, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया कर कृपा, किल विख कटे ज्ञान जन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचै सवारिया, कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया, बाबा जे तू दे सोई जन पावे, पावे तां सो जन दे, जिसनु होर क्या करे विचारिया, एक भरम भूले फिरे दह दे सिक नाम लाग सवारिया, गुर

वही आवो संत प्यारे हो कथ की करें कहानी कथ केरी कित दुआरे पाई है तन मन धन सब सौंप गुरु को हुकुम मन्या पाई है हुकम मन्यो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संतो कथियो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरे आए माया मोहनी जिने भरम भुलाया माया ता मोहनी तने कीती जिंठ गौली पाईया कुरबान कीता तिसे विटो जन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया।

हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगता जुग जुग निराली। ज्यो तू चलाए तिव चलै सुवामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए तिवै चलै, जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा। जन नाम लाए से हर हर सदा ते आवै, जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरु दुआरे सुख पावे। कहे नानक सचे साहिब ज्यो भावे तिवे चलावे, इहो सोहला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहला सतगुरु सुनाया। इहो तिन कै मन वसया जिन धुरों लिखे आया। एक फिरे कनेरे करे गल्ला गली किने ना पाया, कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवे धोए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याए। आ पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों पवित संगत सुभाइया। कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहजना उपजाय विण सहजाय सहसा ना जाए, नह जाए सहसा कित संयम रहे कर्म कमाए। सहसे जियो मलीन है कित संयम धोता जाए, मन तो बहु शब्द लाग हो हर स्यों रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, हो सहसा आव जाए। जियो मैले बारों निर्मल, बारों निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया। इहो तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यों बेतालिया। कहे नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया।

लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो बिन सत गुरमुक्त न पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म हो वै हृदय तिना सुमाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपयो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कह

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नव सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिथे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधि आवे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघनियां ने धर्म हेत सीह दिते बांध बांध कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तानारियां नाल चरवाए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सदके सां सवासां संग निभाया तिन्हां समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै। चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तह तह रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाहु दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दर्शन शनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवां मत उची मत पात दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पहंदे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब।

गुरु प्यारी स्वारी सत्संग जीओ, सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है। सतगुरु जी ने अपनी गोद का सानू सबना आनंद बख्शिश किया है। सरदार गुरप्रीत सिंह जी उन्होंने सारे परिवार वालों सतगुरु जी दित्तियां दातां दा शुकराना करते हुए, जो सतगुरु जी ने कष्ट कट्टे ने उन्हां दा शुकराना करते हुए, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का ओट आसरा लिया, सतगुरु जी की बाणी दे श्री अखंड पाठ साहब गुरु घर विखे करवाए, उपरंत सतगुरु जी की इलाही बाणी के कीर्तन आप जी ने श्रवण किए ने। गुरु चरणा च अरदास है, सतगुरु जी समूह परिवार के सिर ते मेहर प्रे हथ रखन, दरों करों गुरसिखी की दात, नाम की दात, सेवा की दात बख्श के नवाजन, चढ़ती कला वाला जीवन बख्शिश करन, दुखां कलेशां दा सतगुरु जी नाश करन। ये गुरु चरणा च अरदास है जी, इतनी सेवा आप जी ने प्रवान करनी जी। आओ हुण आपां श्लोक पढ़ के समाप्ति करिए जी, क्योंकि भाई साहब कह के गए

0: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम
1: ज्यों कर पर के नान थाम
0: तन तन ते जन जय कर बस्यो हर नाओ
1: नानक ताके बल बल जाओ
0: रहते अवर का।

0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना,
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना,
0: जय प्रसाद हस कर चले,
1: जय प्रसाद सुपूर्ण फले,
0: जय प्रसाद परम गत पावे,
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे,
0: ऐसा प्रभ त्याग अव

0: जपे जप सोए,
1: आप जपाए जपे सो नाओ,
0: मांग वावे सो हर गुण गाओ,
1: प्रभु कृपा ते होए परगास,
0: प्रभु दया ते कमल भगास,
1: प्रभु सो परसा

0: संग जर से
1: साध के संग बसे थान ऊचे
0: साधु के संग जर से
1: साध के संग दिड़े सब धर्म
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निदान
0: नानक साधु के करवान
1: साध के संग सब कुल उदार
0: साध संग साधन मीठ कटम ने सारे
1: साधु के संग सो तन पावे
0: जिस संग ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध के संग सो बासुर देवा
1: साधु के संग पाप पलायन
0: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध के संग सर्व थान गम
0: नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कछ काल
0: दर्शन भेटत होत ने हाल
1: साध के संग कलोखत हरे
0: साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग इहा

0: सादगी टैल संत संग हेत
1: करण न सुने काहू की निंदा
0: सबते जाने आपस को मंदा
1: गुर प्रसाद बिख्या पर हरे
0: मन की वासना मनते टरे
1: इंद्री जित पंच

0: नानक जस मिले जिस लिखिया तुर कर्म,
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास,
0: जिसका नाम सत राम दास,
1: आत्म राम तिस नदरी आया,
0: दास संतर पाए तिन पाया,
1: सदा निकट

0: कई कोड़ प्रभु को खोजनते
1: आतन में पार ब्रह्म लहंते
0: कई कोड़ दर्शन प्रभु प्यास
1: तिनके मिले प्रभु अविनाश
0: कई कोड़ मांगे सत्संग।